रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

भी अब जुर्माना लगेगा, पर चलबेला में आवाज बिल्कुल ओके है, बस मरी जैसा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ریڈیو ٹیون کرے آواز جان آواز دے ہاں

0: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
1: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
1: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर FM 94 स्वाबी।

0: दीप देवाल, हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस प दे नंबर बानी कालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार प सवाबई की हूँ
1: राजी जी बिल्कुल खगोर अगली हैदर मुमन मेडिकल सेंटर चासदा ददी सरा हैदर मुमन अस्पताल सवाबई खो नन खुसूसी पदा प्रोग्राम की गमुंग खबरी बकऊ
0: आया
1: इंशाल्लाह नन बमुंग खबरी खुसूसी पदा प्रोग्राम की द हैदर मुमन अस्पताल द सवाबई पहवाली सर बकऊ द टूर नावल खताव त जदा यादगिरन दर कुम चों की लगट सर टेक्निकल इशू
0: आ
1: नो पदा वजबानी जमुंग द मुफ्ती सिब चे कम प्रोग्राम ई प एफएम 94 बांदी
0: फार्मूले इस्तेमाल
1: नो आगा प्रोग्राम चों की जमुंग ना मतलब आगा प्रोग्राम मुंग ना मिस की दो नो ब्याद डॉक्टर हैदर अली मुमन द वैना मुताबिक चे डॉक्टर से वी चे जमुंग कम प्रोग्राम टेम दे बागा टेम की दिनन मुफ्ती से प्रोग्राम की नन दगा चे कम दे दा टेम प्रोग्राम बजो कम जी सबाना बजमुंग उमागा पखपल रूटीन बांदी यानी ददरियो बजो नवाल तर द सलूर बजो पूरी बात जुमागा पजूर रूटीन बाने जमुंग दगा प्रोग्राम न की गी जी सिर्फ दानन लगा सनेट मसला वन पदगा वजबान दे
0: बेरंग
1: मुंग कोशिश दाव कमुंग चे दगा कम दिनी इस्लामी कम प्रोग्राम की गी मुंग चे दगा नन खामा खोशी और दगा प्रोग्राम मुंग न मिस की गी जमुंग दा प्रोग्राम न उनशी हम समसलन द खुदा दिनी इस्लामी प्रोग्राम न चे गम दी दा मतलब रेडियो बाने कवल दा के दल और ब्यादे लटेम और कवल दा लग ना डीर ज्यादा जरूरी और लाजिमी दीजिए पकम टीम की जिद मुफ्ती से प्रोग्राम उपागा टीम की लगा शान दस नेट मसला वसो टेक्निकल से इशू
0: हुआ
1: दागे पहुंच बाने द मुफ्ती से प्रोग्राम अनुशु न ब्याज चीज मा कम खपल प्रोग्राम टीम ही ददरियो बजो नवाल तर द सलूर बजो पोरी आगा टीम डॉक्टर से मोहतरम चिकम दे मुफ्ती से ब्लवर को यानी जमा पर ख्याल दगा प्रोग्राम ताहिर जमान की और ताहिर जमान से सर जमुंग डीर कदरमंद मुफ्ती से बनास जी दगा प्रोग्राम को बुस द सलूर बजो नवाल तर द पिंजो बजो पोरी बजमा द बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम जी सबाना ब्याह उमा का वापस पजूर रूटीन बांधी यानी ददरियो बजो नवाल तर द सलूर बजो पूरी बात एफ एम 93 और एफ एम 94 उमागा जमुंग उमागा तरीके से जमुंग दा प्रोग्राम न की गई न बिल्कुल तासु सवाल अब या उमागा पजूर टेम बाने जमुंग दा प्रोग्राम न उरी दले शे द दिन तासु फंदुन और मजिया खस्त ले शे जी तुमरा लिसनर चिदा टेम जमुंग प्रोग्राम उरी फगु दस्तासु टूलू लगना डीर जात मेहरबानी डीर जात खुशाल हो सी जी बिल्कुल जर अगले दस्तासु पदराना खिदमत की हाजिरी मजी द एफ एम 94 रेडियो दिलबर द सवाबई पलिक बांधी चिसुमरा कदरमंद मिननाक लिसनर जमा प्रोग्राम उड़ी खगु दस्तास टूलू लगना डी रजात मेहरबानी हो कादा एफ एम 94 रेडियो दिलबर द सवाबई पलिक बांधी सुमरा जमा मशरान जमा कशरान जमा हमजूली जमा द मदरसी नुखेंदे जमा स्पेशल नुखेंदे जमा खामोश और दुन की कसुमरा लिसनर दा टाइम जमा आवाज उड़ी निजी बिल्कुल खगु उस्तास टूल जमा यानी दस्तास उद अखपल कशरूर द बासित अली मुलागूरी सलामुना पखपल जान बांधे कबूल और मंजूर फरमाए यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू खगो जमा सलामुना पखपल जान बांधे कबूल और मंजूर फरमाए उम्मीद दखपल रब अलरम चिता सुटूल बहुम खई द जुन नबा खंदुनो मजेख ले नन बा खुसूसी स्तासु जमा द प्रोग्राम इंतजार कड़ी वी द द्रियो बजनवाल तर द सलूर बजो पूरी खुनन द द्रियो बजनवाल तर द सलूर बजो पूरी जमा प्रोग्राम मनुषु जी जका चिमा खतास तो वजह बयान कर ले जी सबाना बहुमा इंशाल्लाह पजूर रूटीन बानी जमा द बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द प्रोग्राम न की जी फगो तासुल दाहम यादगिर नजर को मा
0: दोबारा 0304
1: राजी तासु मात बदी प्रोग्राम की दटुन नावल मिस जुनर वली गई पदगा 0304-93-93-93-93 पदा नंबर बानी तासु मात मिसड वली गई औजल ब्याज तासु दा नंबर वेल गाडम प 0304-93-93-93 राजी पदा नंबर बानी तासु मात मिसज की जी प 0304-93-93-93 राजी पदा नंबर बानी तासु मात मिसज की जी फगो समानामा बासी तलीदा ज मुलागो रे मजी ज प हैदर मुमन अस्पताल पे खबर खार की जाब कुम यानी ज द डॉक्टर हैदर अली मुमन द सोशल मीडिया एडमिनियम द दीन अलावा The doctor Hidar Ali Momand, focal person him all. The doctor Hidar Ali Momand, personal assistant Hoyum G. Farusana Bunyada, Sahara the Les Bajunawala, the Yavulus Bajupuri, Faridio Pegam, FM 97.4, Zamada Beladuna, Cosmetics Pakistan, Daga Behterin Program G. Audadin Elava, Farusana Bunyada, the Drew Bajunawala, the Salur Bajupuri, FM 93, Redu Dilber Charsada, Opa FM 94, Redu Dilber Sababai, Zamada Beladuna, Cosmetics Pakistan, Daga Behterin Program G. Sirf Nuns among the program, the Salur Bajunawala, the Pinzu Bajupuri, Nor Pumaga Pazur Routine, Zamung the program on Kigiji, Nobil Kul Hogu, the Stasupa Drana, Hidmatki Hazir. The stars of Pul Kashurur, Sokragali Diji, Basitali Mulagur Ragali Diji, Paguta Suladahum Yad Giran Dergum, Chinanda Du Hazar Chibi, the Uwami Miyashti, Nan Naham Tarik Diji, Master of the Studio Pagadeki, Nahaminata, the Pasa Salur Bajiji, Nanda Ziarat Razdao, Nanda Ziarat Poraz, Zamunta Hitar Momanda Sutal, the Sawabai, Nambari Shuridiji, the Khali Poraz, Doctor Hidarili Mumanba, در مومند اسپتال صحابه کی موجودی جی یخو گو تاسو زان رسولی دی کنا زان دمو نمبر د پار رسولی دی کنا نمبر مو زان تاخست دی کنا تاسو کال کردی دی کنا تاسو بوس کال کوی جی زخوایم کی دیش نمبری در نمکمل شوی خو بیام تاسو کوشش داو کی که تاسو نمبر نوی

0: back. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खो कुचरता द दग जवानको प वक्त बाने गम उनकलेशी, न प रारवान वक्त की दग जवान के स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी। द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा, तुम चिप सलूर रज की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और ये वाजिदाना द दग दानो चुकम दागो न दी अगर हम मुकम्मल तो गबाने खत्म होगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल आओ क्लिंडामाइसिन, कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी, कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उष्पो के दनन दनन सासु दानी और द दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।
3: خوش خبری هغا ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو ردي او یا ګوتې بې حرکته شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان وی، پارا د خوشالۍ خبر هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري، د اسلام آباد او د پېښور نوموړې پېډک اینڈ ٹراما سرجن طارق رحیم بی بی اے سی ایس پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اگستو دا پارا پدے نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتے چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز

ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। जमा आवाज और जमा अंदाज और जमा म्यूजिक और जमा प्रोग्राम बिल्कुल लाइव हो रहा है। रास्ते जी खाद स्टूडियो पकड़ो के नमाज सलाम न हमें और द सलोर बजे शुरू जी।

0: रंगम ऑफ द बेलाडोना गोल्ड क्रीम, बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश, बेलाडोना गोल्ड सीरम और द बेलाडोना ब्यूटी किट द यविश पे दे इस्तेमाल सरा खपल मख गुल रंग कई, खुश रंग कई आओ स्पिन रंग कई और हम द टू नंबर द पारा द मजीद मालूम तो दोबारा 0-393-693-93 बेलाडोना को क्रिएशन बाय डॉक्टर हैदर अली मुमन.
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: Sama sahar jodavi nor khandawal Belladonna Gold Vitamin C Formula Face Wash. Taso hum khpal sahar sama pasan khandawal jod kai. Hagam da Belladonna Gold Face Wash sara autul aur khpal makh da mukhtalif qisam muzir asratuna bach satai.
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुनना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासु के हुं?

बरमानी मुंग सरवाली जी 0312-88-150 हमारे स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर इंतजार कम जी संगे सुख बराबर ही जी संग नवी नवी रिश्तेदार खुमन जुड़ छु जिन्हें कई मुचा कर और कीड़ी दी अलकान मुझे दोनों खादिया ने कीड़ी दी मुबारकबाद जमाल खान कबूल मंजूर कमी जिन्हें कोई दिन शुरू डेर मुबारकबाद होते हैं जी दमाल अकान कोई दिन शुरू डेर मुबारकबाद होते मौके में मेहनत ची लग गया दी जिन्हों को पसी गिर जी आगे तम दाव एम चरब जुल जलाल मो द बदमाशान जिन्हों कौन हो साथ जी रबजुल जलाल मोद आगा गजब जिन्हों कौन हो साथ जी मतलब खबर जवाब बिल्कुल न प्री दी अल्लाह मुद आगे न हो साथ लेगा खुदा सोम चिंतन गोरे लगे गुजारा को ना अगे गुजारा के खुबाज औकत गोरे तासुम गुजारे ने कोई कॉलर गुरु जी मुसरे सुख दिस वाल वारिस माला खान सलाम वाले जी यो आर ब्याम अस्सलाम वालेकुम जी लेडीज एंड जेंटलमैन यो आर ब्याम समाल खान सलाम कबूल मंजूर के टूल हागली रागली मलगरी दोस्तान मसरान कसरान लियो आड़ा जिन के लगान कम जिम जमा आवाज हो रही जी तासु को द लड़िए के दबरी खैबर द अशनगरी या दगर द सरी लग गया इस पेले वखी जी या जमा खक जमा आवाज हो रही नो जमाल खान यू आर ब्याम सलाम कबूल मंजूर के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातु जमानुम हैदर अली मोमन दे जी औ हफसाद दिर नमंग सर जी लग गई और सोनिया सारवी ची डबरू जाना रेडियो खुद हो तासुस डिर कम राजी हो तासु वीडियोस डेली द टिकटॉक दलारे मंगो गुरु जी दा मुंगते बेवफा सोनिया स्टार मुंगते खबर आ रही जी द दिन बाद मुंग सरबल आसिया सलामुन अली जी स्वीटी द शबकदर नमक खबर आ रही जी स्वीटी हुई थी डॉक्टर भाई कायनात माहीन समय सलाम हो भाई जी वालेकुम सलाम थैंक यू सो वेरी मच जी लाइबा हैदर संगे खई जी जो बिल्कुल बराबर है जी ताबीर फ्रॉम क्वेटा नेक्स्ट किंग ऑफ के पी के भाई संगे शो और इंतजार दिसमुज जुलू सलाम में कबूल गई जी आओ तारा हैदर फ्रॉम रुस्तम वेलकम तारा वालेकुम सलाम डॉक्टर भाई संगे फोजी आई एम द जमरूद ना बैलाडो जिंदा मर्दान वाले और सुख नहीं सके संगे चले जिक्रा दियम न हुई थी सलाम भाई जिक्रा एम दियम कलाना था सुमा कॉल नाटन कोई चा कॉल हम नाटन कम जो कॉल तो उस गारी का मन यार उसगार से मनो कॉल बैठे सो चुके जिद रेडियो दी प्रोग्राम च कम जमा दुनिया खलक इंतजार की दी प्रोग्राम लेना रहा जमा ना जमा दादा हुई थी जो खुशा से भी प्रोग्राम ना पा देगी मगर ना लका सदस्य मजबूरी खूब जमा भी रेडियो प्रोग्राम लेना था सो कदल जमा रही हुई सलोर मिनट कम मारे जिन फारे का शुमा और मंडे मंडे मंडे मंडे माँ पति पे खबर के पति रोड माने राम मंडे मंडे मंडे में वाले ली पैदा मंडे में वाले जी रामन डक रामन डक रामन डक रामन डक और रामन डे मंडे में वाले दगा दे रेडियो लरा और से प्रोग्राम है तो उगल मात जी गुरे गुरे लिख मुकम मिला भी गुरे से प्रोग्राम में आना प्रेदम जी जका पिता सुख गुरे डेर दिस खालिश तो जगा पगलत बाने रवान दी आखो पे ओल वाड़ी का ना तो पैगाम है तो पजान बजुलम ना कोई जी द बेखतूत खुशके दबार बेलडोन शैम्पू जाल वाले जी द खुशके दखाद में दबार बेदास शैम्पू दर तो बयान कम ची कप दो मिनट के दना दना खुशकी ले रेगले ली नदा शैम्पू स्टास सुकुचरी ले निकले ली नदा शैम्पू बारा से पैसे वखपले वापस वाले जी दा शैम्पू तो वेले की दो खुशके दुश्मन और तो वेले की और तो वेले की बेलडोना एंटी डेंड्रफ शैम्पू द खुशकी उदास शैम्पू ची तासु खुशकी पो मुकम्मल तो गबानी द विख्तोन लड़की और तासु विख्तोर सरा मजबूती की हम अब्याद खुशकी द खादे में दबारा सिर्फ और सिर्फ हफ्ते की द्वजल या यूजल बैलाडोन एंटी डेंड्रफ शैम्पू बानी विख्तुवीन से यो खुशकी द चूलू मर्द बार लड़के जी लाइफ कॉलर पूरी चुमक सर सुख राजी सोलवाड़ी लेट्स सी वन टू थ्री गो

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।